0: ware rangal nge e miyadu muraja me kurewuni suratul adiya ta hisab eno e maden ehen doha kun ar me muraja kuran fashan suratul qariya eno
1: laba
0: ah e mahuri ha kodin ves me har advan tibi kodin ves hama migota muraja kolache nge me har ek kodin na surata bahala ge ves te kodin kiyale vidan ek kujak kiya rani kujak adwa hum ves me hama sura itura muraja kurewen kam ke nge ऐ मुहूर्त हाँ को दिन बस मेरे को तकान्ता कोल्ला मारेंगे ऐ म मुदरिस में तो वाक्य वेलाना वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातु
2: हिफ्ज़ुमुराजा
1: गुल्ल

0: रंग दो दी।
1: मैं तो समय थी रंग दो दी मैं प्रोग्राम निम्माला वागुत चाहिए पा इरादे करें भैया माध्यमाय स्मीगे आ प्रोग्राम के निस्तेना इंतजार करवान का मां उम्मीद करा प्रोग्राम तैयार को